दोस्तों साथियों, आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं विनेश, प्रोग्राम डायरेक्टर, और हमेशा की तरह हम आपके साथ में जुड़ जाते हैं। और शुक्रिया भी करना चाहेंगे आप सभी लोगों को कि आप भी हमें इसी तरह सपोर्ट कर रहे हो। हालांकि हमारा काफ़ी दिन हो गया है, लास्ट 15 ईयर्स, एंड स्टिल यू गाइज आर देयर, थैंक यू सो मच। और आज इस प्रोग्राम में आपको बता दें हमारे पास फिर से कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हाजिर है हमारे स्टूडियो में मीना जी और साथ साथ में अमित जी। और हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे ये है श्री कृष्ण नंदोत्सव, जो त्यौहार या तो फिर इवेंट आप बोल सकते हो क्रशेश में होने जा रहा है। इट्स हैपनिंग ऑन 5th of September, राधा कृष्ण भजन मंडल की तरफ से, और वेन्यू है 53 वैंकूवर क्रिसेंट वाइनोनी में। जो फ्रिक्वेंसी में आप सुन रहे हो, शायद बाय द टाइम हम ब्रॉडकास्ट करेंगे शायद ख़त्म हो चुका होगा इवेंट, लेकिन फिर भी आप ये जो मंडली है या तो ये जो ग्रुप है श्री कृष्णा भजन मंडल, इनको आप फॉलो करते रहिए। फेसबुक पे ये लोग हैं और इनका जो फ्यूचर इवेंट्स में आप शामिल हो सकते हो, और बिल्कुल फ्री होता है। आप में अगर आप की दिलचस्पी है धर्म में या तो भजन कीर्तन वगैरह में, देन डू फॉलो देम, आप कभी भी जा सकते हो। और इसका जब भी कुछ इवेंट्स वगैरह होगा आप हमारे पेज पे भी देखते रहना, जलसा फिजी रेडियो, उस पर भी हम डाल देंगे ताकि यू गेट टू नो व्हेन इज

जो कुछ भी हो रहा है। तो चलो हम शुरू करते हैं एक सॉन्ग के साथ में, और जैसे इस सॉन्ग के बाद में फिर हम अपना जो इंटरव्यू जारी करेंगे और हम बात करेंगे मीना जी और अमित जी से।

0: जी हाँ दोस्तों, साथ ही आप सुन रहे हो जलसा फीजी रेडियो, मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। जी हाँ, आशा है जो लोग हमें फ्रिक्वेंसी पे सुन रहे हैं आपको ये गीत पसंद आया हुआ होगा। और जैसे हमने बोला था कि हमारे साथ है, गेस्ट है जुड़ चुके हैं जिसे हम बात करते चलेंगे, तो स्वागत करना चाहेंगे मीना जी आपको आने के लिए, शुक्रिया। और साथ साथ में अमित, जिससे मुलाकात हमेशा अक्सर जगह जगह पर हमारी होती रहती है। और आई नो यू गाइज आर एक्साइटेड, आप प्लान कर रहे हो जो इवेंट आ रहा है, आई नो काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट फॉर द कम्युनिटी। तो चलो शुरू करते हैं मीना जी, आप बताइए आज आपका दिन कैसा बीता।
1: राधे राधे और जय श्री कृष्णा। और सबसे पहले आपको थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको आने का चांस दिया, और ताकि हम भी कुछ हमारा जो राधा कृष्ण भजन मंडल है वो यहाँ पे कीर्तन भजन माता के चौकी घर घर जाके करता रहता है। आज 8 साल हो गए हम लोग, 8 ईयर्स। और इसी साल हमने सोचा कि क्यों ना हम विनेश जी की थोड़ी सी हेल्प लें, और क्राइस्ट चर्च के जो लोग कभी इंडियन स्टाइल के दही हंडी में और नंद उत्सव में नहीं गए होंगे, तो उन सभी को हमारी तरफ से ओपन इन्विटेशन है, आप सभी आइए और कृष्ण के रंगों में रंगिए, और कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने में लिए के लिए हमारी सहायता करें, और हमारे साथ मिलके हम सब मिलके खूब जय कन्हैया लाल की आए।
0: जी हाँ, थैंक यू सो मच मीना जी। ज़रूर जो लोग हमें सुन रहे हैं या तो फिर जो मीना जी को अभी सुना है, और जो लोग हमारे साथ फेसबुक में जुड़ रहे हैं, तो ये आपका इनविटेशन है कि आप जो ये इवेंट इन्होंने राधा कृष्णा भजन मंडल की तरफ से जो निमंत्रण है आप स्वीकार करें और ज़रूर आए। तो अमित जी, आई नो यू आर पार्ट एंड पार्सल, आई थिंक कोई भी ऐसा कोई इवेंट होगा जिसमें आप नहीं शामिल हो, यू आर एवरीवेयर। तो नो थैंक यू फॉर कमिंग अगेन, हम कहेंगे हमारे स्टूडियो में। तो आप बताइए आज आपका दिन कैसा।
2: Thank you very much, Vinesh ji, firstly for inviting and on very short notice at your in your very popular radio. तो सबसे पहले तो ऐसा है कि I'm supporter obviously of RKV राधा कृष्ण भजन मंडल। और मीनाता ने जब बोला कि हमको ये इवेंट करना है और प्रमोट करना है, तो आपने साथ दिया, तो धन्यवाद।

0: ये इवेंट में एड्रेस बता दूं आपको, ये होने वाला है वैनकुवर क्रेसेंट में श्री श्री राधा कृष्णा मंदिर है। अब उसी मंदिर के बाजू में एक हॉल है, तो दोनों जगह जैसे होगा ये इवेंट। तो आप तो डेट है 5 सितंबर, टाइम है 3:30 PM ऑनवर्ड्स।
1: जी हाँ, और जो 5 सितंबर है याद दिला देखिए, एक सरडे पड़ता है, तो ज़रूर आप जाइए भाग ले। और एक्चुअली वही पर्व रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी का भी, तो आई नो एवरीबॉडी उसी हम कहेंगे सभी यू नो सेलिब्रेट करते रहेंगे। और
0: जन्माष्टमी
1: हाँ, हम फिजी लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो आई थिंक हमारा फ्राइडे को फिनिश होता है।
2: आफ्टर कृष्ण जन्मानंदोत्सव।
1: जी हाँ, तो ये आप करो।
2: मोस्टली इन इंडियन इन इंडिया टेम्पल्स आर डूइंग जन्माष्टमी। जन्माष्टमी बहुत कम होते क्योंकि एवरी वन इज हैविंग फास्टिंग दैट डे, और फिर रात को 12 बजे जाके भगवान के दर्शन करके, और फिर दूसरे दिन जब कृष्ण नंदगांव में पहुंचते हैं तो ये नंदोत्सव होता है। और फिर नंदोत्सव में जितने गांव वाले हैं वो पूरे उनको पता चलता है, अरे क्योंकि नंद बाबा और यशोदा माता को बहुत दिनों बाद, बहुत साल के इंतजार के बाद में कृष्ण आए थे, तो उनका उत्साह अपरिमित था। और उनके उत्साह को भाग लेने के लिए जितने नंद गांव के लोग थे, चलो चलो नंद राय के यहाँ जाएंगे और उनको कृष्ण के आने की बधाई देंगे, उनके घर लाला आया है, तो वो लाला के उत्सव की बधाई देने जाना है और बधाई लेने भी जाना है। और फिर कृष्ण कन्हैया निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और फिर ये दही हंडी का उत्सव होता है। दही हंडी बांधी जाती है और सारे मिलके उसको दही हंडी को फोड़ते हैं, और सारे बच्चे दही मक्खन को लूट लूट के खूब खाते हैं। तो जो लूटने के लूट कर खाने में जो मजा है वो छोटे छोटे बच्चों को मालूम पड़ता है, हमारे टाइम निकल गया लेकिन अभी यहाँ के बच्चों को इतना मालूम नहीं है, तो उनके लिए स्पेशली एक अट्रैक्शन होता है।
1: जी, तो ये जो आप इवेंट होगा इस पर्टिकुलर डे को 5 सितंबर को, तो ये आप पोटली बनाने वाले हो, इसमें रखोगे?
2: हाँ, यस
1: जी,
2: मटकी बनेगी प्रॉपरली, जैसे ये है सीन, बस आपको इसी तरह का सीन दिखेगा, बस इस तरह की बिल्डिंग नहीं दिखेगी।
1: जी, मुझे फोटो दे दो। ठीक है, तो ये मीना जी आपको बतलाने की कोशिश करें, तो नीचे कैन शो इट टू देम।
2: हाँ, तो आपको बिल्डिंग नहीं दिखेगी क्योंकि बस बाकी सीन यही रहेगा। लास्ट टाइम आल्सो वी डन दिस वन, हम लोग अच्छे से रस्सी बांध के और बढ़िया सी मटकी लटकाते और फिर सब बच्चे आके उसको ट्राई और फिर वो फोड़ते और फिर क्या धमाल, उनकी खुशी उस वक्त देखते नहीं बनती, आप उनको कितना भी, वो एक क्षण की खुशी होती है लेकिन बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। तो उसमें उसमें उस मटकी में माखन होता है, मिश्री मिली हुई होती है और नीचे चॉकलेट्स होते हैं ताकि बच्चे खूब लूटे। फिर बच्चों को हम स्पेशली उस दिन हम लोग खिलौने के प्रोग्राम करते हैं, तो बच्चों को भी बधाई मिलती है और बड़ों को भी मिलती है। तो जो भी आने वाला है उनको सबको भर भर के लड्डू और गिफ्ट और चॉकलेट छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये एक अट्रैक्शन होता है।
1: जी, साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। तो जी हाँ, अगर आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं देन डेफिनेटली यू वुड वांट टू ब्रिंग देम देयर। और बच्चों के लिए तो खुशखबरी, आई नो शायद वो हमें नहीं सुनेंगे अभी, लेकिन उनके लिए खुशखबरी है कि एटलीस्ट एक ऐसा दिन रहेगा जहाँ उसको डांट नहीं मिलेगा, वो लोग बदमाशी कर सकते हैं। जी, बिकॉज ये कृष्ण जी का त्यौहार है तो ऑब्वियसली उनका छुट्टी रहता है। सुनने में तो बहुत ही खुशियाँ लगती, काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो बड़े लोग हैं वो लोग भी आएंगे, और स्पेशली जैसे मीना जी बोल रहे कि बैक इन इंडिया या तो फिर जी कहेंगे या जिस जहाँ से भी आप आए हुए होंगे वहाँ का माहौल कुछ अलग होता है, और यहाँ पे हम काफ़ी मिस करते हैं, और इस तरह का जो माहौल क्रिएट होता है देन डेफिनेटली यूड वांट टू कम एंड जॉइन। तो अमित जी, हैव यू बीन इनटू दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स मेक इन इंडिया?
0: इन इंडिया टू एन एक्सटेंट। आई वाज अबाउट टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि क्या फिजी में भी ऐसे ऐसे बताए दही हंडी वगैरह फिजी में?
1: आई डोंट थिंक सो, मैंने कभी देखा नहीं है कि ये सब होता है। अच्छा। हम जब यहाँ पे होली जब होता है, होली त्यौहार होता है, आप लोग जो मटके लगा लटकाते फोड़ना पड़ता है। अच्छा। उतना पॉपुलर लाइक हमारे नहीं था, बट फिर भी वी हैव अदर कम्युनिटीज एज वेल, शायद गुजराती लोग भी मनाते होंगे, शायद उसमें होगा, लेकिन हमारे जो नॉर्थ इंडियन साउथ मैंने नहीं देखा है।
0: अच्छा।
1: हमारे में होली तो हम खेलते हैं, जो रंग वगैरह लगाते हैं, जन्माष्टमी जैसे आप जानते हो, आपने तो हमारे जो फीजी मंडली को देखे होंगे, सनातन हॉल भी आप जाते हो, तो काइंड ऑफ थिंग, और क्रशिश फीजी सेशन भी आपको मालूम है, और भी काफ़ी मंडलीज है, तो हम उस तरह करते हैं। हम लोग 7 या 8 डेज जो होता है हम पूरा कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वेजिटेरियन रहते हैं और वो सब करते हैं। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो नंद उत्सव, ये आई डोंट थिंक फिजी में या हमारे कम्युनिटी में बनता, बट इट्स एक्साइटिंग, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है।

0: और यही आती है एडवांटेज है क्रश चश्मे की, हम यहाँ आते और सभी में रंग जाते हैं।
1: अभी तो थोड़ा सा कमर्शियल भी हो गया है हमारा, तो हमारा जो सोचने का तरीका है राधा कृष्ण भजन मंडल क्राइस्ट चर्च का स्पेशली, कि वो जो ट्रेडिशन हमारा पूरा था हम वही लाए। अब तो बॉम्बे में बहुत थोड़ा सा कमर्शियल हो गया है, तो ये जो हंडी होती है इसके ऊपर आपको मालूम होगा 1-1 करोड़ की हंडी बनती है, और उसके ऊपर कम से कम 10-12 ग्रुप होते हैं, वो सारे ग्रुप सुबह से शाम तक ट्राई करते रहते हैं उसको, ट्राई करते रहते हैं। तो जो सबसे छोटा बच्चा होता है वहाँ हार्डली 1-2 साल का होता है, उसको सबसे लास्ट में चढ़ाते हैं, और फिर वो उसके हाथ में वहाँ तक नारियल पहुँचाना, और फिर नारियल आप ऐसा मत समझो कि डंडे वंडे से फूटती है, बाकायदा नारियल से फूटी जाती है, ये बॉम्बे का तरीका है। और वृंदावन में भी इसी तरह से होता है, और हम सोचते हैं कि हम भी वृंदावन छोटे से क्राइस्ट चर्च को वृंदावन बनाएं।
0: जी हाँ, जैसे मैं सुन रहा हूँ तो मुझे पूरा ऐसे ना इमेजिन में कर सकता हूँ कि वो माहौल बन चुका है और लोग आए हुए हैं। ऑब्वियसली अमित जी आपको तो मालूम है कि व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल वेयर तो वो सब देखने को मिलेगा, सभी लोग पहन के आएंगे। जी हाँ, और अभी तुम देख रहे हैं कि मेन वो भी अपने पूरा फुल कॉस्ट्यूम में आते हैं, खास करके अमित जी एवरी टाइम ही कम्स इन हिज कॉस्ट्यूम, तो अच्छा लगता है। एंड दैट्स गोइंग टू हैपन, और जैसे मीना जी ने बोला है कि बच्चों को तो जरूर आना है एंड एंजॉय करना है, बिकॉज कुछ कुछ प्रोग्राम में हम जाते हैं जो पूजा पाठ होता है, शांत बैठना पड़ता है, नो सुनना पड़ता है, बट जब कृष्ण जी का कोई भी त्यौहार होता है देन बच्चों की तो एकदम छुट्टी होती है, तो डेफिनेटली दे शुड कम इन हैव अ गुड टाइम। और ये जो राधा कृष्ण भजन मंडल है वो काफ़ी जो कार्य भी करती है, जैसे मीना जी ने मेंशन किया है, अगर आपको घर पे कीर्तन वगैरह कराना है देन डेफिनेटली दे कैन कॉन्टेक्ट यू।
1: हाँ, जिनको भी अगर अपने घर घर जाने का बोले ना
0: जी, घर
1: तो घर घर जाने में जैसे माता की चौकी जाते हैं हम लोग और कृष्ण का कीर्तन करते हैं, आपको उस दिन भी आप जो इन जनरल भजन सुनते हैं वो भजन नहीं होते, उस दिन बधाई के भजन होते हैं, एक से एक बधाई होती है, आपका पाँव धरती पे नहीं रहता, इस तरह से आपको भी ऐसा लगता है कि मैं भी इसी तरह से नाचूं और इनके धूम में धूम मचाऊं, इस तरह से हो जाता है। और अगर किसी को हमें बुलाना है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनके घर पे भी हम, उनके वहाँ छोटा बच्चा भी आता है तो हम वो बच्चे की भी बधाई करते हैं, सोहर भी गाते हैं, और सब तरह के सारे देवी देवताओं कीर्तन। अभी जैसे गणपति बप्पा भी आने वाले हैं, तो 18-19 को भी हम दूसरों के वहाँ पे गीत गाने जा रहे हैं, जो RKVM के मेंबर हैं, आउट ऑफ RKVM भी मैं बहुत सारे प्रोग्राम करती रहती हूँ, लेकिन मोस्टली RKVM ने आजकल इतना बिजी कर दिया है, टाइम नहीं मिलता है।
0: जी हाँ, बिकॉज अभी हम कहेंगे, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि हमारी जो संख्या बढ़ रही है क्राइस्ट चर्च में बहुत लोग हो चुके हैं, और जब हम प्रोग्राम करते हैं ज्यादा तादाद में भी लोग आते हैं, अच्छा भी लगता है बिकॉज दे आर कमिंग, और कुछ कुछ नए चेहरे भी मिलते हैं, दे कम दे वॉन्ट टू जॉइन दे वॉन्ट टू डू समथिंग, तो अच्छा लग रहा है कि, और पहले में मालूम था कि यू नो हम कुछ कम ही लोग थे, बट अभी और फिर अभी हम देख रहे हैं कि लोग जगह जगह भी बढ़ रहे हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में काफी लोग हो रहे हैं, अगर देख लो तो वहाँ तो काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, विच इज नाइस, अच्छा लगता है देख के। तो चलो, हमारा हमने काफी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है, जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। एक तो जैसे आपने बोला कि लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा करके अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, वहीं पे इजी पड़ता है सभी लोगों को कॉन्टेक्ट करना, तो आपका कोई फेसबुक पेज वगैरह होगा? ये राधा फेसबुक पेज
1: जी था तो सही, लेकिन अभी उसको ये नहीं किया हुआ था, क्या बोला तो अपडेट नहीं किया हुआ था, तो वी विल सी दिस कितना होता है, सोचेंगे करने के लिए।
0: जी बट अदरवाइज अगर किसी को संपर्क करना है देन दे कैन जस्ट कॉल यू ना, आपको कॉल कर सकते हैं,
1: हम वैसे है इसमें फेसबुक पे पर, लेकिन उसको अब अपडेट की जरूरत है तो हम अपडेट करेंगे।
0: श्योर हाँ, बट अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए प्ले यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, जलसा फिजी रेडियो पे आप मैसेज वगैरह कमेंट्स वगैरह डाल सकते हो, एंड वी विल पास ऑन टू मीना जी अमित जी, एंड देन दे विल गेट बैक टू यू, अगर आपको घर पे कुछ कराना है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट। और ये आपको याद दिला दे कि दिस इवेंट श्री कृष्ण नंदोत्सव जो रहेगा 5th of September सैटरडे को पड़ता है, 3:30 to 7:30 ना शुरू होगा।
1: और मुझे एक ये भी कहना था कि हम जितने भी भजन कीर्तन करते हैं घर घर जाके करते हैं, नो चार्जेस
0: जी,
1: नो चार्ज, हमारा राधा कृष्ण भजन मंडल कोई चार्ज नहीं लेता है।
0: जी हाँ, तो ये भी एक बड़ी बात है कि इट्स अ चैरिटी, चैरिटी हो रहा है और धर्म के कार्य, आई नो मीना जी जब धर्म की बात आती है तो, और अमित जी आप लोग सभी यू नो धर्म कार्य में दिखते हो, विच इज़ ए वेरी नाइस, तो जिसे आपने सुना कोई चार्ज भी नहीं है, तो आप संपर्क कर सकते हो।

0: और जाते जाते मीना जी आप कुछ गाकर सुनाना चाहोगे? नंद का या कोई भी जो आपको ठीक लगे।
1: व्हाट यू वांट टू से, आप क्या सुनना चाहते हो? मतलब कृष्ण के जन्म का कि माखन चोर का?
0: हाँ, माखन चोर साउंड्स मोर एक्साइटिंग है।
1: ये वाली सारे जगदा ये इतना सोना लगता।

0: बहुत बहुत बढ़िया अमित, मैंने सोचा आप कोरस करने वाले हैं। जी हमारे पास
1: नॉट इन फ्रंट ऑफ हर।
0: जी वैसे अभी आपने सुना जो मीना जी गा रही थी, लेकिन इसमें अगर जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह होता है तो उसको बहुत ही सज जाता है गीत, तो आप इमेजिन कर सकते हो। हाथों हाथ अगर आप आए हुए हो मीना जी, जैसे आपने बधाई सॉन्ग बोला है, जैसे हम फिजी में बधाई सोहर या कुछ हम बोलते हैं, तो आप कुछ बधाई वाला गाना गाओगे? देखते हैं
2: बधाई कि बधाई वाला गा देंगे
0: हम, बस वही कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारे फिजी में जब लोग गाते हैं वो और आपका क्या डिफरेंट है।
2: हम जो गाते हैं वो बताते हैं।

सबको मिलेगी नंद बाबा के अंगना, आज बधैया सबको मिलेगी नंद बाबा के अंगना। ये तो हो गया अंगना मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ गोपियां कुछ कुछ नंद गांव के ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमको दूर दूर कहाँ पे खबर मिली है, यमुना पे खबर मिली है कि यशोदा जायो।

जमुना पे सुन के आई, फिर वो आती है और आते बराबर क्या कहती है, और फिर वो बधाई भी मांगती है कि अरे तेरे

0: आई यशोदा मैया दे दे बधाई।
1: बहुत खूब मीना जी, बहुत खूब। काफी डिफरेंट है हमारे फिजी के जो अच्छा, लोग गीत हम कहते हैं
2: okay.
1: थोड़ा डिफरेंट लोग गाते हैं और ये थोड़ा बॉलीवुड काइंड ऑफ ट्विस्ट एंड मिक्स था लेकिन मुझे पता है और भी आप काफी अलग अलग तरह से भी गाते हो।
0: बहुत है आपको ऐसे ऐसे गाने को सुनने को मिलेंगे, पलने से लेकर ललना आया पलना आया फिर पलने में क्या हुआ, ये भी सब आपको सुनने को मिलेगा। इतना इतना मतलब कृष्ण कन्हैया तो का तो जन्म ही, ये सृष्टि की रचना इसीलिए की गई है कि वो आपको उनकी छोटी छोटी लीलाओं से बहुत खुश रखें। अभी कृष्ण जन्म आ गया, फिर कृष्ण बड़े हो जाएंगे, फिर कार्तिक मास आएगा तो उनका विवाह होगा, तुलसी विवाह करो, फिर वो और बड़े हो जाते हैं, फिर आपको तुम्हारे में होली, लाजवाब वृंदावन की होली होती है। हम

0: पे भी करते हैं और बहुत सुंदर होली करते हैं। ऐसे नहीं कि रंगों में रंगना है, लेकिन जो होली के ट्रेडिशनल गाने होते हैं वही गाए जाते हैं। ऑफकोर्स बॉलीवुड के बिना आजकल काम नहीं चलता है, लेकिन वो बाद में, लेकिन पहले ट्रेडिशनल सॉन्ग्स।
1: जी हाँ, बढ़िया, बहुत बहुत बहुत खूब। और काफ़ी लोग जो अभी जुड़ रहे हैं हमें देख रहे हैं, तो याद दिला दे, ये जो इवेंट है श्री कृष्ण नंदोत्सव, आपको जाना है 53 वैंकूवर क्रेसन वाइनोनी में, और 5 सितंबर रहेगा 3:30 ऑनवर्ड्स। शाम के बेला में आप जा सकते हो और काफ़ी धूम मचेगी। और जो ये राधा कृष्णा भजन मंडल है, काफ़ी सालों से है और काफ़ी लोग हैं इसमें, और सभी लोग
0: से।
1: जी हाँ, तो लोग सब धूम मचाएंगे और आई एम श्योर यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम। और अमित जी, इसमें भोजन वगैरह?
2: प्रसादम तो डेफिनेटली, किसी कोई भी फंक्शन, इंडियन फंक्शन में प्रसादम तो होता ही है, तो डेफिनेटली नाइस टेस्टी प्रसादम एंड स्वीट्स, डेफिनेटली।
1: ओके, और किसी को अगर कुछ योगदान देना है, शायद कुछ साथ में लाना वगैरह है,
0: वो जिसको भी
1: इच्छा अनुसार, कोई रुकावट नहीं है,
0: वो उनको, वो तो उसी इच्छा पे है, जो भगवान के सामने रखेंगे वो भगवान जी का है
1: जी।
0: और फिर वो जो अमाउंट आता है वो भी हम ऐसे ही फंक्शनों के लिए वापरते हैं।
1: जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और ये सुन के, और ऑल द बेस्ट कि सब अच्छी तरह जाए और अच्छी तरह इवेंट हो, सक्सेसफुल रहे। और ये भी हम आशा करेंगे कि उस दिन जो हमारा क्रशेश का मौसम भी साथ दे, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ठंड हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने देखा उससे कुछ असर नहीं पड़ता, लोग वही साड़ी पहनते हैं और किसी तरह बिना जेसी वगैरह के काम चला लेते।
0: आप सब के ना, सभी लोग मोस्टली कम इन गोपी ड्रेस
1: जी,
0: अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के आओ, छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बनाओ, छोटे छोटे बच्चों को गोपी बनाओ, और खूब आपको, अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, वो भी अपने अपने स्टाइल से डांस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर पहले से थोड़ा सा टच में रहना चाहिए। और अभी काफी दिन है, तो छोटे बच्चों को अगर उस दिन भी वो लेकर आए, उनको कुछ करना है तो हम करने देंगे।
1: जी हाँ, थैंक यू सो मच। तो ये थी मीना जी और
2: विनेश जी।
1: जी हाँ, तो फिर मिलेंगे हम किसी और दिन वीडियो पे। वीडियो ऑफ करने से पहले याद दिला दे कि हम बात कर रहे थे मीना जी से और अमित जी से, और ये राधा कृष्णा भजन मंडल की तरफ से जो इवेंट जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, श्री कृष्ण नंदोत्सव जो रहेगा 5 सितंबर जो सैटरडे पड़ता है, बस कृष्ण जन्माष्टमी जो हमारे रेफ्यूजी लोग बनाते हैं उसके बाद में जो सैटरडे पड़ता है, शनिवार को 3 से 7:30 PM आप जा सकते हो 53 वैंकूवर क्रेसन वाइनोनी। थैंक यू सो मच, शुभरात्रि, आप अपना ख्याल रखें, और आज तो अच्छी तरह गर्मी है, बट डू बी केयरफुल बिकॉज वेदर चेंज हो जाता है, एंड देन डोंट फॉरगेट दिस इवेंट। और इसका पोस्टर अगर हम डाल देंगे अपने फेसबुक पेज पे, वो इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। थैंक यू सो मच निको, एंड थैंक यू फॉर हेल्प, एंड निको यू कैन स्विच ऑफ द फेसबुक लाइव वीडियो नाउ। जो लोग हमारे साथ फ्रीक्वेंसी में हैं, आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए एक और गीत सुनाते हैं, और इस गीत के बाद में हम और कुछ बात करेंगे, और भी हमारे पास समय है, तो वी विल ट्राई टू, हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स जो प्ले करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब गेस्ट होते हैं तो हमारे पास शायद सॉन्ग्स के लिए कुछ कम समय पड़ जाता है, तो वी विल ट्राई टू कवर अप जितना हम सकेंगे, बट आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of GoWise Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथी है जलसा फिजी रेडियो, मैं हूँ प्रवीण डायरेक्टर विनेश। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, जैसे हमने वादा किया था कि हम कुछ सॉन्ग्स आज तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो चलो नेक्स्ट सॉन्ग तैयार है, ये सुनिए, और उसके बाद में जैसे जैसे समय मिलेगा कुछ बात भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे।